0: ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

खुदा चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है।

अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तिनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा।

उन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं।

0: मोमिनों, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो।
1: वह

मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो एहतराज जरूर नहीं, और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ती। फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी करें और लड़े नहीं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो खुदा ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की।

फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है।

0: ये लोगों से तो छुपते हैं और खुदा से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो उनके साथ हुआ करता है, और खुदा उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है।
1: हाँ।

उन लोगों की बहुत सी मशवरतें अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की मशवरत अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम खुदा की खुशनूदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

0: छह सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: छह सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर

1967 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई, और आया था दबाने दब गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ कातिल, वजा अल हक को वजह कल बातिल, इन्नल बातिला काना जहू का। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 जोसीपी की दुनिया, और मैं हूँ आपका मेजबान हमजा अहमद रजा। अशार से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि हम किस उनवान पे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज हम उनवान जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। जब दुश्मन को ये लगा था कि हम इस मुल्क पर हमलावर हो जाएंगे, इस मुल्क पर अपना रोबो दबदबा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर अफवाज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी के जहन में भी नहीं था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इरादों को यूं नाकों चने चबवाए कि दुश्मन भी सोचता रह गया, और बताया कि शेर के कछार में हार डालने का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, यौम दिफाए पाकिस्तान, जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह मेरे मुल्क पर हमलावर होने की कोशिश की, तो अफवाज पाकिस्तान ने इस दिन को यादगार इस सूरत में बनाया कि दुश्मन को छुपने की जगह ना मिले, दुश्मन को वापस भागना पड़ा, और जहां पर निशाने हैदर जैसे बड़े जो एजाज हैं फौजी वो यहां पर बांटने पड़े, क्योंकि हमारे जवानों ने इस अंदाज के साथ कुर्बानियां दी कि दुश्मन भी देखकर हैरान रह गया। यौम दिफाए पाकिस्तान, जब दुश्मन को अंदाजा होने लगा कि रात का वक्त था, 6 सितंबर का दिन था, और दुश्मन ने कोशिश की कि शायद के नाश्ता लाहौर किया जाए, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने चविंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। वो जिस दुश्मन को अपनी ताकत पर गुरूर था, वो जिस दुश्मन को अपनी ताकत पर अकड़ थी, और ये लग रहा था कि शायद के लाहौर में जाके नाश्ता किया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ पर वो बेटे माओं के मौजूद हैं कि जिन्होंने मौत को अपना जो है वो दोस्त बनाया हुआ है, जिन्हें मौत से ख़तरा नहीं है, जिन्हें जाम शहादत जो है वो नोश करने की गर्ज से आए होते हैं। क्योंकि इंसान को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आए

थिंक सो के खौफ मौत का होता है, लेकिन उन बेटों को सलाम, उन माओं को सलाम, उन वालिदैन को सलाम कि जिन्होंने जाम शहादत नोश करने की गर्ज से अपने बच्चे मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए जो है वो सर्फ किए होते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए जो है वो दी होती हैं, उन माओं को सलाम। आज के दिन को बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही होता है कि उन बच्चों को, उन माओं को, उन लखते जिगर जो हैं जिन्होंने हमें महफूज करने के लिए, हम रात को अगर सुकून से सो रहे होते हैं तो उसके पीछे वो नौजवान, वो उन माओं के लाल मौजूद हैं जो LOC पर खड़े होकर हमारे मुल्क की जो है वो हिफाजत कर रहे होते हैं। और 6 सितंबर को भी कुछ यूं ही हुआ था। 1965 की जंग में सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि उस जंग के अंदर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी फौज से आगे बढ़कर कुर्बानी देने को तैयार था, और जिस दुश्मन ने जब कोशिश की हमारे मुल्क पर हमलावर होने की, हमारी कौम ने इस बात की गवाही दी, इस बात का सबूत दिया कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। उस दिन जब रात के अंधेरे में दुश्मन ने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा, बल्कि दुश्मन ने नहीं, बुजदिल दुश्मन किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों में भी कुछ साल पहले कुछ हमारे दुश्मन ने कोशिश की रात को हमलावर होने की, और सिंदूर नामी ऑपरेशन जब पाकिस्तान पे किया तो फिर हमारी फौज ने बताया कि बनियानुल मरसूस किसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या होता है, जब वो सामने चट्टान बनकर खड़े हुए और दुश्मन को रेत की दीवार साबित किया तो फिर उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के जो अफवाज हैं और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और वो जो अपनी माओं के लाल जो LOC पर खड़े होते हैं और मुल्क की हिफाजत का जिम्मा लिए होते हैं, उनमें जज्बा क्या होता है, जज्बा मुहब्बत वतनी क्या होता है, उन्होंने बताया, बल्कि बताया क्या, उन्होंने मुल्क से वफा करके दिखा दिया, अपनी जान को पसे पोछ डाला। वो जो अपने सीनों के साथ बम बांध कर टैंकरों तले जाकर लेट गए और हवा में दुश्मन को नाको चने चबवाए, उन्होंने ये दिखाया। फिर दुश्मन जो है, ये जिसे ये लगता था कि मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमारी अफवाज हवा में हो, हवाबाजों की सूरत में हो, तब भी शाहीन हो तो दबोच लेते हैं, जमीन पर हो तो हिलने नहीं देते, और उसके बाद पानी की बात की जाए तो पानी में जब हो तो फिर उसी पानी में डबो के जो है वो उस दुश्मन को मंतकी अंजाम में पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल इससे जाहिर ये होता है कि यौम दिफाए पाकिस्तान एक अहद का दिन है कि इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, हमें इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करना है। तालीम में खास तौर पर हमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करना है, पढ़ लिख के इस मुल्क जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, क्या हम कुछ पढ़ के कुछ मुल्क को सिर्फ घर में बैठकर यूनिवर्सिटीज में जाकर एक अच्छी तालीम याफ्ता कौम नहीं दे सकते? तो ये सवाल आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पर वक्त होता है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद।

वेलकम बैक सामाइन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और बंदा नाजीज का नाम है हमजा अहमद रजा, जिसकी आवाज आपकी समातों से टकरा रही है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे खास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की, और 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का यौम दिफा, जिस दिन दुश्मन को ये लगा था कि हमारी फौज रात को लंबी तान कर सो रही है, लेकिन हमारी फौज ने ये बताया कि शेर जब सो रहा होता है या शेर जब जाग रहा होता है, शेर खौफ की अलामत होता है, शेर शेर होता है। और दुश्मन को इस चीज का बखूबी अंदाजा हो गया जब 6 सितंबर को रात को दुश्मन को यह लगा कि पाकिस्तान की फौज आराम से सुकून से सो रही है और हमने यहां से घुसना है पाकिस्तान की हदूद में और लाहौर में जो है वो नाश्ता करना है, लेकिन रास्ते में उन्हें मेजर अजीज भट्टी शायद कहीं पे नजर नहीं आए, उन्हें उसका जज्बा नजर नहीं आया, उन्हें उस माँ के लाल का महाज पर खड़े हुए दिखाई नहीं दिए जो अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन को जो है वो शिकस्त देने के लिए तैयार खड़े थे, उन्हें MM आलम नजर नहीं आए जो हवा में दुश्मन को नाको चने चबवाने की तैयारी पकड़े खड़े थे, उन्हें वो शख्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका शायद ये ख्याल था कि हम घुस जाएंगे और हम अपना जो जश्न जो है वो लाहौर में मनाएंगे, BRB क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क को जो है वो झंडा लगाएंगे, लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और फिर सियालकोट के महाज और चविंडा के मैदान में दुनिया के टैंकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान उन्हें शायद याद नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हम वो लोग हैं, हमारी अफवाज वो अफवाज है कि जिन्हें अपनी जान की जरा रत्ती बराबर भी परवाह नहीं, उन्हें ये पता था कि हमारे मुल्क के ऊपर जब हमला होगा तो हमने सब कुछ भुला के अपनी जानें कुर्बान करनी हैं और दुश्मन को जो है वो नाको चने चबवाने हैं, हमने अपने सीनों पर बम बांध कर टैंकों तले लेटना है और दुश्मन की सरहद को पार करने की नाकाम कोशिश को जो है वो रेत की दीवार साबित करना है। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान की अफवाज किसी सूरत भी पीछे हटने वाली नहीं है, और इस चीज़ का अमली मुजाहरा हमने उस दिन 6 सितंबर को देखा और दुनिया भर ने इस चीज़ का एतराफ किया कि शेर हर वक्त खतरे की अलामत होता है। और 6 सितंबर को बड़ी खूबसूरत सी बात एक हमारे जो सिंगर हैं उन्होंने कहा कि ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। यहाँ पर वक्त होता है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6। वंस मोर टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. Ki Duniya. Ki Duniya.

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: Ladies and gentlemen,

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: सुनना है तो इसे सुनो।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। सूफी

64 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई, और आया था दबाने दब गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर खुद वहाँ कातिल, वजा अल हक वजहक अल बातिल, इन अल बातिला काना जहूका। अस्सलामुअलैकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, और मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। अशार से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि हम किस उनवान पे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज हम उनवान जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है यौम दिफाए पाकिस्तान। जब दुश्मन को ये लगा था कि हम इस मुल्क पर हमलावर हो जाएंगे, इस मुल्क पर अपना रोबो दबदबा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर अफवाज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी के जहन में भी नहीं था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इरादों को यूं नाकों चने चबवाए कि दुश्मन भी सोचता रह गया, और बताया कि शेर के कछार में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, यौम दिफाए पाकिस्तान, जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह मेरे मुल्क पर हमलावर होने की कोशिश की, तो अफवाज पाकिस्तान ने इस दिन को यादगार इस सूरत में बनाया कि दुश्मन को छुपने की जगह ना मिले, दुश्मन को वापस भागना पड़ा, और जहां पर निशाने हैदर जैसे बड़े जो एजाज हैं फौजी वो यहां पर बांटने पड़े, क्योंकि हमारे जवानों ने इस अंदाज के साथ कुर्बानियां दी कि दुश्मन भी देख कर हैरान रह गया। यौम दिफाए पाकिस्तान, जब दुश्मन को अंदाजा होने लगा कि रात का वक्त था, 6 सितंबर का दिन था, और दुश्मन ने कोशिश की कि शायद के नाश्ता लाहौर किया जाए, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने चविंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। वो जिस दुश्मन को अपनी ताकत पर गुरूर था, वो जिस दुश्मन को अपनी ताकत पर अकड़ थी, और ये लग रहा था कि शायद के लाहौर में जाके नाश्ता किया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ पर वो बेटे माओं के मौजूद हैं कि जिन्होंने मौत को अपना जो है वो दोस्त बनाया हुआ है, जिन्हें मौत से ख़तरा नहीं है, जिन्हें जामे शहादत जो है वो नोश करने की गर्ज से आए होते हैं। क्योंकि इंसान को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आई थिंक सो के खौफ मौत का होता है, लेकिन उन बेटों को सलाम, उन माओं को सलाम, उन वालिदैन को सलाम कि जिन्होंने जामे शहादत नोश करने की गर्ज से अपने बच्चे मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए जो है वो सर्फ किए होते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियाँ पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए जो है वो दी होती हैं, उन माओं को सलाम। आज के दिन को बकायदा तौर पर सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही होता है कि उन बच्चों को, उन माओं को, उन लखते जिगर जो हैं जिन्होंने हमें महफूज करने के लिए, हम रात को अगर सुकून से सो रहे होते हैं तो उसके पीछे वो नौजवान, वो उन माओं के लाल मौजूद हैं जो LOC पर खड़े होकर हमारे मुल्क की जो है वो हिफाजत कर रहे होते हैं। और 6 सितंबर को भी कुछ यूं ही हुआ था। 1965 की जंग में सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि उस जंग के अंदर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी फौज से आगे बढ़कर कुर्बानी देने को तैयार था, और जिस दुश्मन ने जब कोशिश की हमारे मुल्क पर हमलावर होने की, हमारी कौम ने इस बात की गवाही दी, इस बात का सबूत दिया कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। उस दिन जब रात के अंधेरे में दुश्मन ने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा, बल्कि दुश्मन ने नहीं, बुजदिल दुश्मन किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों में भी कुछ साल पहले कुछ हमारे दुश्मन ने कोशिश की रात को हमलावर होने की, और सिंदूर नामी ऑपरेशन जब पाकिस्तान पे किया तो फिर हमारी फौज ने बताया कि बनियानुल मरसूस किसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या होता है, जब वो सामने चट्टान बनकर खड़े हुए और दुश्मन को रेत की दीवार साबित किया तो फिर उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के जो अफवाज हैं और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और वो जो अपनी माओं के लाल जो LOC पर खड़े होते हैं और मुल्क की हिफाजत का जिम्मा लिए होते हैं, उनमें जज्बा क्या होता है, जज्बा मुहिब्बुल वतनी क्या होता है, उन्होंने बताया, बल्कि बताया क्या, उन्होंने मुल्क से वफा करके दिखा दिया, अपनी जान को पसे पोछ डाला। वो जो अपने सीनों के साथ बम बांध कर टैंकरों तले जाकर लेट गए और हवा में दुश्मन को नाकों चने चबवाए, उन्होंने ये दिखाया। फिर दुश्मन जो है ये, जिसे ये लगता था कि मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमारी अफवाज हवा में हो, हवाबाजों की सूरत में हो, तब भी शाहीन हो तो दबोच लेते हैं, जमीन पर हो तो हिलने नहीं देते, और उसके बाद पानी की बात की जाए तो पानी में जब हो तो फिर उसी पानी में डबो के जो है वो उस दुश्मन को मंतकी अंजाम में पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल, इससे जाहिर ये होता है कि यौम दिफाए पाकिस्तान एक अहद का दिन है कि इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, हमें इस के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करना है। तालीम में खास तौर पर हमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करना है, पढ़ लिख के इस मुल्क जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, क्या हम कुछ पढ़ के कुछ मुल्क को सिर्फ घर में बैठकर यूनिवर्सिटीज में जाकर एक अच्छी तालीम
याफ्ता कौम नहीं दे सकते। तो ये सवाल आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पर वक्त होता है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद।

वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और बंदा नाजीज का नाम है हमजा अहमद रजा, जिसकी आवाज आपकी समातों से टकरा रही है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे खास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की, और 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का यौम दिफा, जिस दिन दुश्मन को ये लगा था कि हमारी फौज रात को लंबी तान कर सो रही है, लेकिन हमारी फौज ने ये बताया कि शेर जब सो रहा होता है या शेर जब जाग रहा होता है, शेर खौफ की अलामत होता है, शेर शेर होता है। और दुश्मन को इस चीज का बखूबी अंदाजा हो गया जब 6 सितंबर को रात को दुश्मन को यह लगा कि पाकिस्तान की फौज आराम से सुकून से सो रही है और हमने यहां से घुसना है पाकिस्तान की हदूद में और लाहौर में जो है वो नाश्ता करना है। लेकिन रास्ते में उन्हें मेजर अजीज भट्टी शायद कहीं पे नजर नहीं आए, उन्हें उसका जज्बा नजर नहीं आया, उन्हें उस माँ के लाल का महाज पर खड़े हुए दिखाई नहीं दिए जो अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन को जो है वो शिकस्त देने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें MM आलम नजर नहीं आए जो हवा में दुश्मन को नाको चने चबवाने की तैयारी पकड़े खड़े थे। उन्हें वो शख्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका शायद ये ख्याल था कि हम घुस जाएंगे और हम अपना जो जश्न जो है वो लाहौर में मनाएंगे, BRB क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क को जो है वो झंडा लगाएंगे। लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और फिर सियालकोट के महाज और चविंडा के मैदान में दुनिया के टैंकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान उन्हें शायद याद नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हम वो लोग हैं, हमारी अफवाज वो अफवाज है कि जिन्हें अपनी जान की जरा रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। उन्हें ये पता था कि हमारे मुल्क के ऊपर जब हमला होगा तो हमने सब कुछ भुला के अपनी जानें कुर्बान करनी हैं और दुश्मन को जो है वो नाको चने चबवाने हैं, हमने अपने सीनों पर बम बांध कर टैंकों तले लेटना है और दुश्मन की सरहद को पार करने की नाकाम कोशिश को जो है वो रेत की दीवार साबित करना है। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान की अफवाज किसी सूरत भी पीछे हटने वाली नहीं है और इस चीज़ का अमली मुजाहरा हमने उस दिन 6 सितंबर को देखा और दुनिया भर ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि शेर हर वक्त खतरे की अलामत होता है। और 6 सितंबर को बड़ी खूबसूरत सी बात एक हमारे जो सिंगर हैं उन्होंने कहा कि ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। यहाँ पर वक्त होता है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6। वंस मोर टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.4

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। A public service message by University of Central Punjab.
2: छह सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP।

0: आप अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। अभी जो कातिल है, पहले जो हमारा सेगमेंट है इस पे बात करना चाहता हूँ। हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर है। वो कातिल उसके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वो कातिल उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो कातिल कोई मजहबी आलम भी हो सकता है, वो कातिल उसके गिर्दोनवाह में चलने फिरने वाले वालिदैन भी हो सकते हैं, उसके भाई भी हो सकते हैं। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जिसमें आप कह लो कि हर लाख में से कोई 5 अफराद जो हैं, लाख में से 22 करोड़ की अगर हमारी आबादी है, तो मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1 लाख शख्स में से, अगर ये रेशो कंपैरेटिवली बाकी ममालिक से बड़ी कम है, बाकी दुनिया के अंदर अगर 183 ममालिक में से पाकिस्तान का जो नंबर है ना खुदकुशियों में, वो 169 है। मतलब हमसे सिर्फ 13 ममालिक ऐसे हैं जहां पे सबसे कम कम खुदकुशियां होती हैं, और 168 मुल्क ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान से ज्यादा खुदकुशियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी ये रुझान हमारी मुआशरे में क्यों पनप रहा है? हम जिंदगी में उन लोगों की तारीफ करते हैं जो तारीफ के काबिल है। आपको कोई सिंगर बड़ा पसंद है, सिंगिंग उसकी क्वालिटी है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, आप भी उसकी तारीफ कर रहे हो। कोई रेसलर है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप भी उसकी तारीफ कर रहे हो। कोई बहुत अच्छा टीचर है, कोई स्पीकर है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, आप भी उसकी तारीफ कर रहे हो। क्या आपकी तारीफ की जरूरत उस शख्स को है जिसकी लाखों लोग तारीफ करने वाले हैं, या उस शख्स को है जहां सबसे ज्यादा तारीफ की जरूरत है? वो शख्स, वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो अपने आप को क्लास में आइसोलेटेड समझता है, जो घर में अपने आप को तनहा समझता है, जो बड़ी भरी भीड़ के अंदर अपने आप को तनहा समझता है, वो शख्स सबसे ज्यादा हकदार है। एक भरा हुआ पानी का जग है और एक खाली प्यासा सहरा है, तो पानी की जरूरत सहरा को है या जहां पे पहले सैलाब आया हुआ है वहां पे है? सहरा को है। जब सहरा पे बरसात होती है तो वहां पे उम्मीद के शगुफे फूटते हैं, दरख्त पैदा होते हैं, हरियाली जन्म लेती है। ऐसे ही वो लड़का, वो स्टूडेंट, वो फर्द जिसको घर वाले भी कह रहे हैं ये इनकार है, जिसको उस्ताद कहता है तो किसी काम का नहीं है, जिसको बाप भी डेली कहता है ये मैंने क्या पैदा कर दी चीज, ये वो लफ्ज हैं जिसकी वजह से वो जो बच्चा है
1: आइसोलेट हो जाता,
0: सबसे पहले अपने आप को बेफायदा समझना शुरू करता है कि मैं तो किसी फायदा मेरा है ही नहीं, ना घर वालों को फायदा है। कोई एक तो हो जिसके लिए मैं कह सकूं मुझे जिंदा रहना है। वालिदैन भी आपको कहते हैं कि आप नकार हो, भाई भी ये कह रहे हैं, रिश्तेदार भी ये कह रहे हैं, हर जगह से आपको मायूसियां मिल रही हैं। अब वो बंदा हमारा मतमा नजर होना चाहिए। अगर हमने तारीफ करनी है तो उसकी करनी है। वो शख्स सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल है कि मायूसी के सहरा के ऊपर जब तारीफ की कुछ बूंदें पड़ेंगी तो वहां पे उम्मीद के शगुफे फूटेंगे जो उसको जिंदा रहने पे मजबूर करेंगे, जो कहेंगे कि मैं इतना बेफायदा नहीं हूं, लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, लोग मुझे चाहने वाले हैं, कोई ऐसा है जिसकी मैं जरूरत हूं। लिहाजा ये वो चीज है जो उसको अदराक उसके अंदर एहसास पैदा करेगी कि तुम अन इम्पॉर्टेंट नहीं हो इस सोसाइटी के अंदर, तुम बड़े अहम हो। लिहाजा हम सबको इन रवैयों के ऊपर ख्याल करने की जरूरत है। मुझे बहसियत उस्ताद, आपको बहसियत दोस्त, वालिदैन को बहसियत बाप, माँ, बहन, भाई, सबको इस पर सोचना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर, इरफान अली फानी साहब इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं सोसाइटी के एक वर्स्ट इशू के ऊपर जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा इसकी रेशो जो है बढ़ती जा रही है। खैर, सर ने बात की थी सोसाइटी के पीछे कोई कातिल भी होता है, मैं उस क्वेश्चन को ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिफरेंट वे में सर से दोबारा पूछूंगा, और क्योंकि उस पर मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हुई वो मैं सर से क्लियर करूंगा इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और आप सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, वी बी राइट बैक।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आपका मेजबान मोहम्मद अली अजमल प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर इरफान इरफानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे अब बात कर रहे हैं। खुदकुशी का जो एक एलिमेंट हमारी सोसाइटी में उभर कर सामने आ रहा है और उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है डे बाय डे, एक मायूसी की सिचुएशन है हम सब के लिए और अलार्मिंग सिचुएशन भी है। और इस पे सर मैं आपने पहले बात की थी पहले सेगमेंट में कि खुदकुशी जो है वो एक इसके पीछे एक कातिल मौजूद होता है और खुदकुशी जो है वो इंसान के पीछे कोई ना कोई उसका मर्डर होता है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि सर ये भी तो बात है ना, मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी तहफ़ुज़ात ये हुए कि इंसान जो है खुदकुशी एक बुजदिली है और इंसान जो है खुदकुशी जब भी करता है तो अपने होशो हवास में करता है ना,
1: बिल्कुल ठीक
0: खुद करता है,
1: शौरी कोशिश है,
0: बिल्कुल शौरी कोशिश है। तो मतलब फिर इसके पीछे अगर कोई अगर कोई इंसान को तंग भी कर रहा है, कोई डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो इस तरह ये नहीं होना चाहिए कि इंसान उसे कोप अप करे, उसके साथ फाइट करे, उसके साथ वर्बल गुफ्तगू करे, ना कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए।
1: किसी से ये पूछा गया कि जिंदगी को एक लफ्ज में डिफाइन करे तो उसने कहा उम्मीद। लाइफ इज ऑल अबाउट होप, लाइफ इज ऑल अबाउट सम इंस्पिरेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्यूचर्स। कि जब तक आपके अंदर उम्मीद का दिया जल रहा है जिंदगी की शमा रोशन रहेगी, और उम्मीद तब तक आपके पास रहेगी जब तक कोई आपको कंधा देने वाला, आपकी बातों को सुनने वाला, आपका कथार्सिस जिस पे हो सके वो मौजूद होगा। हम जब ये कहते हैं कि खुदकुशी बुजदली का नाम है, तो बुजदली उन मुआशरों के अंदर ये किसी एक खास क्लास के लिए तो ये बात की जा सकती है, लेकिन द कंट्री लाइक पाकिस्तान जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, और उनको उन चीजों का अदराक या एहसास नहीं है कि जिसको हम कह, क्योंकि हमारे तालीमी निजाम के अंदर भी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो बच्चों को मोटिवेट रखें, डिवोट करने की, कुर्बानी करने की जो है उनको सबक दें। लिहाजा ऐसे मुआशरे के अंदर जब एक बच्चा अपने घर सबसे पहला उसका सहारा घर होता है, जब घर के, और जाहिर बात है हर शख्स की कोई ना कोई ऐसा जरूर जिंदगी में होता है जिसको वो समझता है कि जहां नहीं जिसके ऊपर उसकी सबसे ज्यादा तवक्कोआत होती हैं,
0: एक्सपेक्टेशन
1: हर शख्स से हम तवक्कोआत नहीं रख सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिंदगी में कभी भी सिवाय एक या दो लोगों के अलावा कभी किसी से तवक्को ना रखो तो आप जिंदगी बड़ी स्टेबल गुजार लोगे। लेकिन ये तो वो करेगा ना जिसको शौरी तौर पर इस चीज का एहसास है कि मेरी तवक्कोआत मुझे मार रही है, मुझे किसी पे तवक्कोआत नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जिनको एहसास नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ऐसे लेक्चर्स नहीं मिले जो उनको मोटिवेट रख सकें, जो उनको जिंदगी की हकीकत से आशना कर सकें, वो लोग घर में सुबह उठते हैं कानों में कुछ आवाजें पड़ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि पांचवी क्लास का बच्चा जो है अगर वो एक लेटर लिखता है अपने वालिदैन के नाम और उसमें ये लिखता है कि डियर मामा एंड पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, आप मुझसे ये तवक्को कर रहे थे कि मैं इतने नंबर लूंगा प्राइमरी में,
0: बिल्कुल ऐसा होता,
1: मैंने ये नंबर नहीं ले सका, लिहाजा ये जूते और मेरा यूनिफॉर्म और मेरी किताबें ये नहर के किनारे पड़ी हुई हैं
0: और मैं
1: अब खुदकुशी करने लगा हूं। अब ये दो महीने पहले का
0: बिल्कुल
1: वाक्य
0: मैंने भी
1: अच्छा सुना है। अब क्या उस बच्चे की इस कोशिश को हम बुजदली का ताना दे सकते हैं? एक बच्चा तो है ही बच्चा, बुजदली तो तब होगी जब आपने पहले, मैंने आपको जंग लड़ने का सलीका सिखाया हुआ हो, फिर आपको मैंने जंग मैदान जंग में भेजा हुआ हो, और मैदान जंग में जब आप भाग जाओ तो आप बुजदल हो।
0: बिल्कुल,
1: वो बच्चा तो अभी ट्रेन ही नहीं हुआ था जिंदगी के लिए, उस बच्चे को तो हौसला मंदी की जरूरत थी, जुर्रत और तवानाई की जरूरत थी। और जैसे ही वो अभी बढ़ता है नहीं, वालिदैन जी तुम्हारी खाला के पुत्र ने तो इतने नंबर ले लिए, तुम क्या कर रहे हो, देखो बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मतलब शुरू से ही बच्चों के जहनों में हम ऐसा दबाव डाल देते हैं जो बच्चे का ओरिजिनल होता है, जो उसकी एसेंस होता है, जिसके साथ अल्लाह ने उसको पैदा किया होता है, वो एसेंस तो हम वहीं पे मार देते हैं जब हम जबरदस्ती उनके ऊपर किताबों और नंबरों को ठोंसना शुरू कर देते हैं। वो जो उसका एसेंस है, एसेंस से मतलब वो जो रूह है, वो जो कह लो कि खमीर है जो उसका, जो जिसमें वो खूब खेल सकता है, आगे बढ़ सकता है, परवान चढ़ सकता है, उसको हमने मार दिया और उनको कहा जी इतने नंबर ना तुमने लिए तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या करता हूं। मां भी उसको ताने दे रही है और खाला के पास गया तो वो कहते तुम मेरे पे तो इतने नंबर लिए, तुम्हारे इतने कम। अब ये वो अमामल है जहां पे बच्चे को वालदैन की सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले दिनों घर गया तो मेरे जो बहनोई थे, मेरे भांजा, मेरे साथ उसकी बड़ी एसोसिएशन है, तो मैट्रिक का इम्तिहान था और मैट्रिक के अंदर उसकी कोई फोर्थ पोजीशन आई, तो मुझे कहा गया कि इरफान देख लो यार, तुम तो माशाल्लाह इतने लायक हो, फलां हो फलां, अब ये तुम्हारे साथ इतना है तो ये इतना नालायक है, फलां है। मैंने फौरन से रद्द किया उनकी इस बात को। मैंने कहा खुदा के लिए चौथे नंबर पे आया है, 50 की क्लास है, तो आपने ये नहीं देखा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ये देख लिया कि आधा खाली है, ये नहीं देखा कि तीन, ये देख रहे हो कि तीन इससे ऊपर है, ये आप नहीं देख रहे हो कि 40 बच्चों को इसने क्रॉस भी किया हुआ है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, उन बच्चों को जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी अहलियत है, उसमें उनको खेलने दो। कतन उनके ऊपर ये मत, मैं तमाम वालदैन जो इस वक्त गाड़ियों में आते जाते मेरी बात सुन रहे हैं, खुदारा ये कत्ल है जब आपके दबाव की वजह से कोई शख्स इसलिए आपका सामना नहीं कर सकता कि मैं अब्बू के सामने जाऊंगा, भाई के सामने जाऊंगा या मम्मा के सामने जाऊंगा तो ये रिजल्ट कार्ड लेके जाऊंगा तो वो मुझे क्या कहेंगे। तो खुदा के लिए यही वो पहला स्टेप है जो उस बच्चे को अगले स्टेप पे एक इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर करेगा।
0: बिल्कुल, जो हम इस वक्त सुनने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा अहम मैसेज दिया सर ने, और हम सबको चाहिए कि इस चीज को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स पे जो, और अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनकी स्किल्स को डिफाइन करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि इतने ग्रेड्स चाहिए या क्या। इन द एंड स्किल्स मैटर्स अलॉट। तो सर आपने बात की है अभी अभी वालदैन की, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखिये मैंने खुद बहुत सारे इस तरह के वाकयात सुने भी हैं और इनके बारे में देखा भी है कि सोसाइटी में जो है 5 साल का जो 5वीं क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का, छोटे छोटे बच्चे लेटर्स लिख के पेरेंट्स को जो है इस दुनिया से जो है वो चले जाते हैं खुदकुशी का, उनके ऊपर प्रेशर तो बेसिकली होता है। तो सर देखें, अब जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्लेक्स्ड, कॉम्प्लेक्सिटी है ना जो कि इस चीज को राइज कर रही है कि वो कहते हैं कि चाचू के बेटे ने इतने नंबर ले लिए हैं, मामू के बेटे ने इतने नंबर ले लिए हैं। हाँ जी, तो सर अब मैं ये चाहूंगा, चले एक तरफ से हमने बात कर ली, स्टूडेंट की बात की, तो अब पेरेंट्स को ऐसे क्या रीजन बनते जा रहे हैं कि हम अब पेरेंट्स जो है वो सिवाय इस बात के कुछ सोचते ही नहीं है कि मेरा बच्चे के अगर नंबर ना आए, उन्होंने तो इज्जत जिल्लत का मसला बना लिया। तो पेरेंट्स के लिए क्यों, मतलब
1: अब ये देखो
0: क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में।
1: एक तो बच्चे मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है ना, इकबाल के बकौल वो खुद ही होती है। इकबाल ने कहा था, ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अब ये जो वालदैन का बच्चे पे प्रेशर है, सबसे पहले तो वो उनकी इस खुदी को छीन रहा है। अब आप सवाल पूछो कैसे,
0: जी बताएं।
1: अब मैं टीचर हूं, मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर 2 नंबरों से मेरा फलां ग्रेड रह गया है, तो खुदा के लिए मुझे 2 नंबर दे दें।
0: ओके,
1: अब ये देखो कि हाथ फैलाना जो है, नंबरों की भीख मांगना और पैसों की भीख मांगने में फर्क नहीं है। खुदी का ये तकाजा होता है कि जो आपकी मेहनत है वो आपको उसका अजर मिल गया, उसके ऊपर जो आपको दिया जा रहा है या तो वो नजराना हो सकता है अगर मैं अपने खुशी से दे दूं, ठीक है, या इनाम हो सकता है जो मैं आपको खुशी से दे दूं, आपका रिवॉर्ड हो सकता है। लेकिन जब आपको दे दिए गए नंबर और बच्चा मेरे पास आ रहा है, सर प्लीज प्लीज प्लीज, कभी किसी की कॉल करवा रहा है जिसको प्लीज आप इतने नंबर देते हैं, कभी खुद आके मुझे, सबसे पहले तो उसका जो सेल्फ है बच्चों, जो
0: डिग्रेड हो गया
1: है, जो उसकी खुदी है, खुद उसने अपने हाथों से उसका गला दबा दिया कि जो तालीम ने ये सिखाना था कि भाई आपने अपनी खुदी को नहीं बेचना, जो आपका है वो ही आपका है, जो आपका नहीं है जब आप उसकी डिमांड करोगे तो वो आप किसी और का हक छीन रहे हो। वो 2 चीजें किसी और का, जिसने ज्यादा मेहनत की हुई थी, ये 2 नंबर उसको मिलने थे, आपने बगैर मेहनत के जब उनकी डिमांड कर दी तो ये एक भिखारी बगैर मेहनत के जब पैसे मांगता है तो ये सेम सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब इसलिए मैं ये कहता हूं कि इन दबाव को यहां तक रखो आप कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर उस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। आप पे जो काम है वो है लड़ना, अपना बेस्ट देना। अच्छा, अब उसके नतायज क्या निकलते हैं, नतीजा का फैसला करने वाली जात ऊपर है,
0: बेशक
1: आप सबब को देखते हो, मुसब्बिब अल असबाब कोई और है।
0: बिल्कुल, वेरी वेल समराइज्ड, बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं सर हमारे साथ, और आप जो हमें सुनने वाले हैं, आप लोगों को चाहिए कि उन बातों को जो है वो शामिल करें अपनी जिंदगी में और जरूर इन बातों से सीखें और ये पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं सर। अच्छा ब्रेक हमें फिर यहाँ पर एक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं कुछ अलामत के बारे में बात करूंगा कि खुदकुशी की अलामत, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ जो हमारे करीबी लोग हैं, हमारे करीबी दोस्त हैं जिनको पता लग जाता है कि इंसान इस एक क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहा है, उनका क्या किरदार होना चाहिए हमारी लाइफ में, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, वी बी राइट बैक।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. आपका मेजबान मोहम्मद अली अजवत प्रोग्राम जावेद जिंदगी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान अली फानी साहब, और उनसे मैं गुफ्तगू तो कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैंने ब्रेक से पहले आपसे बोला था कि हम अलामत की डिस्कशन करेंगे, अलामत के बारे में पूछेंगे सर इरफान अली फानी साहब से. और साथ साथ सर आपने ये भी बताना है कि जो एक एलिमेंट सोसाइटी में मौजूद तो है खुदकुशी का, तो जब कुछ इसके अलामत जब जाहिर हो जाती हैं, या लेट सपोज मेरा कोई दोस्त है या कोई जानने वाला बहुत करीबी इंसान है, वो जब उसको पता लग जाता है कि इंसान क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहा है और उसको हैंडल नहीं कर पा रहा और कुछ वर्स्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या किरदार होना चाहिए हमारे लाइफ में?
2: बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया. और वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एक दम नहीं होते. कि जो ही हादसा होता है वो अचानक से नहीं होता है, उस हादसे के कुछ मुहर्रिकात जो है ना, कहीं से यह सफर शुरू हुआ था और कदम ब कदम, दर्जा ब दर्जा, मरहला वार ये आगे बढ़ता बढ़ता उस नहज पे पहुंच जाता है जब इंसान एक काल कोठड़ी के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है और जिंदगी की रोशनी से अपने आप को महरूम कर लेता है. अच्छा, अब इसकी अलामत के अंदर जो पहली अलामत है ना, जो नफ्सियात दान से मैंने गुफ्तगू भी की और पढ़ा भी, वो ये कहते हैं कि दो तरह के मसाइल होते हैं खुदकुशी करने वाले लोगों के, जो जितने भी लोगों ने खुदकुशियां की हैं. पहला होता है माली मसाइल और दूसरे हैं खानदानी मसाइल. माली मसाइल से मुराद इकोनॉमी, मुआशी जो इंसान की जिंदगी है,
1: कॉमन है वो,
2: कि जो पावर्टी है, कहते हैं पावर्टी इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स. एक तरफ ये भी है, किसी दिन हम इस पे भी बात करेंगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि पावर्टी इज द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स, कि दुनिया में जितने भी अजीम लोग पैदा हुए हैं वो सारे गरीब थे. ठीक है, तो अजमतें भी गुर्बत के साथ एसोसिएटेड है.
1: बिल्कुल.
2: अच्छा, ये हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे. तो जो माली मसाइल है ना, कि इंसान विदाउट इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकता. हमने ये किया कि हमारी जो ख्वाहिशें थीं उनको हमने जरूरतें बना लिया, कि जो जरूरतें हैं वो तो मेरी पूरी हो रही हैं. जरूरतें क्या हैं, मुझे क्या चाहिए है जी, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, दो वक्त का, दो रोटियां, ये हर बंदे को मुयस्सर है, हर बंदे को अवेलेबल है,
1: लेकिन नाशुक्री का एलिमेंट मौजूद है.
2: अब कहां पे आके मसला पैदा होता है, वो नहज होता है जहां पे आपकी ख्वाहिशें आपकी जरूरतें बनना शुरू हो जाती हैं. अगर तो जिंदा रहना ही मसला है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है.
1: ओके.
2: जिंदा रहने के लिए जितनी खुराक इंसान को चाहिए, वो दूसरी जंगे अजीम के बाद एक बंदे का वाक्या मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में एक दफा डिस्कस किया था.
1: अच्छा.
2: एक फौजी था और फौजी जो था वो किसी जजीरे में उसका जहाज तबाह हो गया, अकेला अब एक कश्ती के अंदर वो तैरता फिर रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर. 40 दिन तक वो एक शख्स जो है वो कश्ती में रहा है. अब वो मरने की भी सोच रहा है, मैं कैसे मरूं, खाने के लिए सोच रहा है और खाने के लिए उसके पास
1: आपने हमारे प्रोग्राम में बात की,
2: बात
1: मुझे
2: की
1: याद है,
2: 5 से 10 दिन का उसके पास राशन था खाने के लिए. अब उसने उस राशन को ऐसे इस्तेमाल किया कि वो 40 जितनी देर तक वो जिंदा रह सकता है रह सके
1: उसने इसको.
2: अच्छा अच्छा, एक वक्त ऐसा आया कि समंदर का पानी तो पीने के काबिल ही नहीं होता. उसने अपने अपने पसीने को भी निचोड़ निचोड़ के पीना शुरू कर दिया और अपने जो हाजात होती हैं उसको भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जिंदा रहने के लिए. अच्छा, और उसके बाद जब उसने उसे पूछा गया ना, जिंदा रह गया, बच गया, एक जजीरे पे एक जहाज ने उसको देख लिया और पकड़ा, जी आपने इस इतने बड़े हादसे से क्या सीखा है, तो उसका जवाब बड़ा मजे का था. उसने कहा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी और दो वक्त की बस रोटी चाहिए. अगर उसके पास ये है ना, तो वो कभी मर नहीं सकता.
1: शुक्र अदा करना.
2: 40 सालों के अंदर मेरे पास कहता इतनी रोटियां थी, 5 से 10 जितने भर राशन और पानी की 2 बोटल्स थी, उन्होंने मुझे जिंदा रखा, वो हैं तो मैं मरा नहीं हूं. ठीक है, तो इंसान कभी इन 2 चीजों के बगैर मर नहीं सकता. इसके अलावा जिस वजह से आप मरते हो वो कोई और फैक्टर्स होते हैं, वो आपकी ख्वाहिशें हैं. आप कहते हो मैंने ये बनना था, फलां के पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, मैं तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, सारों को इतने इतने बड़ी चीजें मिल रही हैं. व्हेन यू आर इन कंपैरिजन विद अदर पीपल, दूसरों से आपने कंपैरिजन करना शुरू किया नहीं और आपने अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी को वेलकम किया नहीं।
1: सर अब मैं ये यहाँ पे एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि आपने उसमें बात की सोसाइटी का एक एलिमेंट आपने रेज किया पॉवर्टी,
2: पॉवर्टी यस यस
1: गुर्बत, और ऑब्वियसली गुर्बत एक लीडिंग सोर्स है टुवर्ड्स दैट रेडिकुलस इशू जो हमारी सोसाइटी में एक वर्स्ट इशू है सोसाइटी का। सर आप क्या ये नहीं समझते घर में खवातीन का भी किरदार होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अपने हस्बैंड को, हाँ जी
2: दूसरी जो अलामत है
1: ये लेना है वो लेना है
2: मामला,
1: हाँ जी
2: दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर इन्वेस्टिगेट किया है रिसर्चर्स ने वो है खानदानी मसाइल जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। खानदानी मसाइल से क्या मुराद है, घरों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े हैं, सास का बहू का आपस में झगड़ा है, भाइयों का रिश्तेदारों के साथ झगड़ा है जिसको हम आम जुबान में शरीका बोलते हैं, ठीक है अच्छा उसको दिखाना, उसको खुश करना, उससे कंपैरिजन करना, अब ये वो चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको उस तरफ लेके जाती हैं
1: जहां
2: पे आप अपने आप को तन्हाई की तरफ ले जाना शुरू कर देते हो। तो खानदानी मसाइल क्यों आपको खुदकशी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि एक होते हैं आपके जज्बात, जज्बात की वाबस्तगी खून के रिश्तों से होती है और जब खून के रिश्तों में आपको नजर आता है ना कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जब खून के रिश्तों में ये आपको नजर आता है ना कि ये लोग आपको नकारा समझ रहे हैं, क्योंकि उसी बंदे की बात ने ही तो आपको ये यकीन दिलाना था कि आप नकारा नहीं हो, जिस बाप ने ये कहना था कि बेटा तू बड़ी ताकत है इंशाल्लाह काम करेगा, जिसके ऊपर भरम था जैसे इकबाल ने कहा जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई, जिसने उसको तवानाई देनी थी उसी ने उसको सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया ये कह के कि तू निकाल।
1: यानी आप समझते हैं जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती थी लगाई जा सकती थी तो वो लोग एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते और इंसान इस की तरफ जाता
2: असल में। देखो ना मैं अपने बड़ों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मुझसे गलती होगी उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि मेरे बड़े हैं, मुझे रास्तों का नहीं पता मुझे रास्ते दिखाने चाहिए क्योंकि ये बड़े हैं, ठीक है मैं इंसान हूँ कमजोरियां हैं मेरे पास गुमराही है सारा कुछ है, लेकिन इनको मुझे यहां तक तू नहीं कहना चाहिए कि तू बेफायदा है नाकारा है ये मर क्यों नहीं जाता ये फलां, ये वो जुमले हैं जो घरों में बोले जाते हैं, ये वो जुमले हैं जो हम सुनते हैं कि ये बोले जाते हैं, और ये तो वो बातें हैं जो हमें रेडियो का जारी बात है हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो हम बहुत खुल के बात नहीं कर सकते हैं, हमको भी अल्फाज के पर्दों के अंदर इस हकीकत को बयान करना है। लिहाजा ये मैसेज मैं सबसे पहले एक दफा मुझे याद पड़ता है मैं एक कॉलेज में पढ़ाता होता था अभी मेरी टीचिंग का नया नया आगाज था ये 2007-6 की बात है कि मैं बस में सफर कर रहा हूं मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बाबा जी बोले बेटा की कितने चल रहे तू, मैंने उन्हें कहा जी मैं असल में फलां कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा बेटा आप देखो तुम और साथ आप कहां से हो आप, मैंने बताया जी मैं पीछे से मेरा एक गांव से ताल्लुक है बला बला और उसके बाद मैं फलां कॉलेज में पढ़ाता हूं और साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं ये सारी बातें मैं बता। अच्छा मेरी बातें सुन के बाबा जी ने फौरन मेरा कंपैरिजन अपने बेटे से करना शुरू कर दिया, कहते देख पुत्र एक तू है परदेश में बैठा हुआ है पढ़ भी रहा है पढ़ा भी रहा है अपना खर्चा भी उठा रहा है मेहनत कर रहा है एक मैं जम्मे है। अब ये वो बातें मैंने फिर जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया अपने बेटे को कि मेरा बेटा फलां है फलां है फलां है, मैंने कहा बाबा जी 16 साल तक आपने इंतजार कर लिया ना उसका कि ये पढ़ ले, हम किसी आइडियल रियासत में नहीं रहते हैं कि जैसे ही आप पढ़ोगे तो नौकरी प्लेट में लेके कोई आ जाएगा कि ये आपकी नौकरी आओ करो, यहां पे आपको अपना हक लेने के लिए भी जंग करना पड़ती है इस सोसाइटी के अंदर, तो आपको उसको एक दो साल दो उसको भी ये एहसास है कि मैंने कुछ करना है, अगर उस एहसास के साथ आप उसको डांटना शुरू कर देंगे उसको रेडिक्यूल करेंगे अपने रिश्तेदारों के अंदर उसको नीचा दिखाना शुरू कर देंगे तो एक तो पहले ही वो एक एहसास एक सेंस ऑफ गिल्ट में तो वो पहले ही है, और जब आपने भी उसके कंधे से हाथ उठा लिया मेहरबानी का आपने भी उसको वो बातें करना शुरू कर दी जो उसके दुश्मनों को करनी चाहिए थी तो बच्चे का अल्टीमेट वो रास्ता अपनाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: लिहाजा आपने जहां इतना इंतजार किया है दो साल और इंतजार करें, बाकी रिस्क की जात अल्लाह ताला रिस्क अता करता है,
1: हाँ
2: लेकिन बच्चों को अपनी जंग खुद लड़ना सीखनी चाहिए।
1: अच्छा सर आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि एक हमारी खुशकिस्मती है कि हम दीन इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और एक हमारी बदकिस्मती है कि हम दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब उतरी कुरान मजीद उसमें खुले अल्फाज में लिखा है कि खुदकुशी हराम है और हम ایک ایسے مذہب سے جب تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمارے گائیڈرز بھی ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کیا گیا, تو یہ بدقسمتی کا کیا عالم ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے ہیں.
2: مذہب کی بھی تعریف ایک لفظ میں یہی ہے کہ مذہب از آل اباؤٹ ہوپ.
1: اوکے,
2: اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ بندے جتنے گناہ کر سکتا ہے کر لے, لیکن میری دائرہ رحمت سے تو باہر نہیں نکل سکتا. یہ اللہ کا بھی چیلنج ہے کہ میں وہ ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے تو مایوس تم ہو ہی نہیں سکتے. اور مایوسی کا نام جو دین آپ کو دیتا ہے وہ شیطان ہے. انہیں کہا شیطان کو اگر آپ نے کسی مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو مایوسی کو ہی شیطان کہا جاتا ہے. مایوسی ہوتی ہے جو آپ کو ہر اس گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے. مایوسی ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے تحفتاً, آپ اس تحفے کو رد کر کے اپنے ہاتھوں سے آپ اس کا گلا گھونٹ دیتے ہو. تو دین اسلام دنیا کے اندر جتنے بھی ابھی تک تحقیق ہوئی ہیں نا, اسٹڈیز ہوئی ہیں, ایک بات پہ سبھی ریسرچز متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جن معاشروں کے اندر مذاہب کے اوپر لوگوں کے عقائد ہیں, لوگ مذہبی جو ہیں, ان معاشروں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت کم ہے. اور وہ معاشرے جو مذاہب سے دور ہیں, مذہب کوئی بھی ہو, وہ خودکشی کا رجحان سب سے زیادہ اس کمیونٹی میں ہے جس کو آپ لا دین کہتے ہیں, ایتھیسٹ کہتے ہیں.
1: بے شک,
2: کیوں ہم ہیں نا, ہمارے پاس ایک سہارا ہے. میں نے دن رات محنت کی, کوشش کی کہ میں نے یہ منزل حاصل کرنی ہے, مجھے نہیں ملی. آخر میں نے اس کسی ایسی طاقت کو ڈھونڈنا ہے کہ جس کے سر پہ اس الزام کو دھر سکوں کہ کس نے یہ ہونے دیا. تو پھر ہمیں ایک کندھا نظر آتا ہے, وہ ہے میرے مالک کی ذات. وہ ذات ہے جب جس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے مالک کو منظور نہیں تھا. بچہ لپکتا ہے آگ کی طرف, ماں کو پتا ہے یہ آگ کے اندر بچے کے لیے اٹریکشن ہے, لیکن ماں اس کا ہاتھ آگ کے کوئلے تک پہنچنے نہیں دیتی. اس کو پتا ہے کہ یہ جلا لے گا. بچہ پیٹتا ہے کہ میں نے پکڑنا ہے. ماں کوئلہ تو نہیں اس کو چھونے دیتی, لیکن ایک ایسی اور چیز ضرور دے دیتی ہے کہ اس کا دھیان اس کوئلے سے ہٹ جائے اور اس چیز کی طرف لگ جائے. میرا مالک ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ایک میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے لیے بیسٹ ہے, ایک وہ ذات سوچتی ہے میرے لیے کیا بیسٹ ہے. اور جب میں نے جو سوچا کہ یہ میرے لیے بیسٹ ہے, اگر مجھے وہ نہیں ملا میری تمام توانائیاں خرچ کرنے کے باوجود, تو مجھے یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے تھی ہی نہیں. اگر مجھے مل بھی جاتی تو مجھے اس نے اجاڑ کے رکھ دینا تھا, کیونکہ میری ساری محنتوں نے اگر مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا تو اب مجھے اس مسبب الاسباب کے ذمے اپنا سارا کچھ چھوڑنا ہے. میں نے اپنی محنت کر دی. اس کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پر پر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. آپ نے اگر مالک پہ اپنی ڈوری چھوڑ دی ہے نا, تو پھر انسان کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہو سکتا.
1: بے شک, ویری ویل سمرائزڈ. اینڈ سر نے جو آخر میں پنچ لائن بولی ہے نا, کہ جب آپ مالک پہ چھوڑ دیتے ہو تو بس پھر آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے اور خوشی سے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آج, ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹاپک کو جتنی اویئرنیس اس پہ کریٹ کر سکیں, کیونکہ حساس ایشو ہے, بڑھتا ہوا ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں, جس کو نلیفائی کرنا ہی پڑے گا ہر صورت میں. تو آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, والدین جو سن رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ وہ ایک ایگوئسٹک چیز جو ہے, ایک مٹیریلسٹک چیز جو ہے, ایک کمپلیکسٹی والی چیز جو ہے, کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اس میرے بیٹا اس سے زیادہ نمبر لے یا اس سے کم نہ لے, یا اس کو یہ ایک انا کا مسئلہ نہ بنائے. زیادہ کم نمبر ڈزنٹ میٹرز, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا ہنر اور سکلز جو ہوتی ہیں اس میں اس کو پاس کر ہی دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, اور اس کا جو ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ ایکٹ کر رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ اگر آپ کو کوئی مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی ابیوز کر رہا ہے, تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ سمجھو پھر اگر آپ خودکشی کی طرف جائیں گے, آئسولیشن کی طرف جائیں گے, پھر تو آپ ہار گئے. تو اب ہار نہیں ماننی, آپ کو چاہیے کہ اس مصیبت کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. تو خودکشی کے ایلیمنٹ کو ہمیں اب سوسائٹی سے نلیفائی کرنا ہوگا. سے نو ٹو سوسائڈ, وچ از دا ورسٹ ایلیمنٹ ان پاکستان, اینڈ ہمیں سب کو مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और बंदा नाजीज का नाम है हमजा अहमद रजा, जिसकी आवाज आपकी समातों से टकरा रही है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे खास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की, और 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान का योम दिफा, जिस दिन दुश्मन को ये लगा था कि हमारी फौज रात को लंबी तान कर सो रही है, लेकिन हमारी फौज ने ये बताया कि शेर जब सो रहा होता है या शेर जब जाग रहा होता है, शेर खौफ की अलामत होता है, शेर शेर होता है। और दुश्मन को इस चीज का बखूबी अंदाजा हो गया जब 6 सितंबर को रात को दुश्मन को यह लगा कि पाकिस्तान की फौज आराम से सुकून से सो रही है और हमने यहां से घुसना है पाकिस्तान की हदूद में और लाहौर में जो है वो नाश्ता करना है। लेकिन रास्ते में उन्हें मेजर अजीज भट्टी शायद कहीं पर नजर नहीं आए, उन्हें उसका जज्बा नजर नहीं आया, उन्हें उस माँ के लाल को महाज पर खड़े हुए दिखाई नहीं दिए जो अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन को जो है वो शिकस्त देने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें MM आलम नजर नहीं आए जो हवा में दुश्मन को नाको चने चबवाने की तैयारी पकड़े खड़े थे। उन्हें वो शख्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका शायद ये ख्याल था कि हम घुस जाएंगे और हम अपना जो जश्न जो है वो लाहौर में मनाएंगे, BRB क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क को जो है वो झंडा लगाएंगे। लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। और फिर सियालकोट के महाज और चविंडा के मैदान में दुनिया के टैंकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान उन्हें शायद याद नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हम वो लोग हैं, हमारी अफवाज वो अफवाज है कि जिन्हें अपनी जान की जरा रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। उन्हें यह पता था कि हमारे मुल्क के ऊपर जब हमला होगा तो हमने सब कुछ भुला के अपनी जानें कुर्बान करनी है और दुश्मन को जो है वो नाको चने चबवाने हैं, हमने अपने सीनों पर बम बांध कर टैंकों तले लेटना है और दुश्मन की सरहद को पार करने की नाकाम कोशिश को जो है वो रेत की दीवार साबित करना है। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान की अफवाज किसी सूरत भी पीछे हटने वाली नहीं है। और इस चीज़ का अमली मुजाहरा हमने उस दिन 6 सितंबर को देखा और दुनिया भर ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि शेर हर वक्त खतरे की अलामत होता है। और 6 सितंबर को बड़ी खूबसूरत सी बात एक हमारे जो सिंगर हैं उन्होंने कहा कि ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। यहाँ पर वक्त होता है छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6। वंस मोर टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

और वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और हमजा अहमद रजा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे योम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से और खराज तहसीन पेश कर रहे थे उन बहादुर माओं के लाल को जिन्होंने इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि निशान हैदर जो है एक बड़ा फौजी अवार्ड जो है वो हमारे उन जवानों को दिया गया जिन्होंने 6 सितंबर के अंदर दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बनकर उभरे। उनमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, जिस तरह कैप्टन राजा सरवर शहीद जो हैं वो एक बड़ा नाम जिन्होंने दुश्मन के लिए, दुश्मन पर की हवास के ऊपर जो है वो तारी हो गए, दुश्मन के सोच और ख्यालात के ऊपर तारी हो गए और दुश्मन को ये बता दिया कि पाकिस्तान के वो लाल अपनी जानें बाद में रखते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क की सालमियत पहले रखते हैं। फिर उसके बाद बड़ा नाम लिया जाए मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, आपने हमारे मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी बिल्कुल कमाल की। मेजर अजीज भट्टी की हम बात कर रहे थे और उनके साथ साथ सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, लांस नायक महफूज शहीद और उनके साथ साथ कैप्टन कर्नल शेर खान, वो शेर जो दुश्मन को, दुश्मन के बिल में घुसकर उसको जो है वो नोचने की जो है ताकत रखता था, वो शेर कि जिसने दुश्मन की हवास पे सवार होकर दुश्मन की टांगे जो हैं वो कांपने पर मजबूर कर दिया, और वो शेर जो दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को शिकस्त देने पर हावी आ गया, और वो शेर जो दुश्मन को दूर से नजर आता था जब तो दुश्मन की कांपें टांगना शुरू हो जाती थी, वो पाकिस्तान के शेर। और बिल्कुल ये खराज तहसीन के काबिल हैं, ये दाद के काबिल हैं, क्योंकि इन्होंने कोई चीज, कोई अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अपने सांस होती है, अपनी जिंदगी होती है, उसको भी पसे पुछ डाला और सिर्फ नजर उन्हें रखी कि पाकिस्तान को अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी वो आंखें नोच के रख देंगे। हमने पिछले दिनों में देखा जिस तरह बनियानुल मरसूस ऑपरेशन के बाद हमने, क्योंकि हम ये कहते थे कि हमने ये चीज सुनी हुई है, लेकिन जेन जी ने ये देखा, फिर रील्स बनी, फिर मीम्स बनी और दुश्मन को हवा में जो है हमने वो जो अपना पाकिस्तान के पास बड़े बड़े तैयारे थे वो जब दुश्मन के घर में घुसे और वो शेर बनकर जिस तरह दुश्मन के घर में घुसे और फिर उन्हें मजबूर किया भागने पर, फिर वो हवा में जो राफेल का दावा करते थे, खुद में ताकतवर बनने की एक जिस तरह फिल्मी दुनिया के अंदर घूम रही होती थी, दुश्मन एक्टिंग करते थे कि हम ताकतवर हैं, राफेल के नाम पे जो गुरूर और तकब्बर रखते थे उनके तकब्बर को जो है वो खाक में मिलाया, उनको मजबूर किया। और दुनिया ने देखा जिस तरह ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो दुश्मन के सरों पर सवार है, जो दुश्मन के लिए मुश्किल का बायस है और जो दुश्मन के पास जो है वो पाकिस्तान की दिफा के जो निज़ाम को हमने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया और फिर बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान के साथ इलहाक करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें सऊदी अरेबिया, जिसमें तुर्किया जैसे बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के साथ इलहाक किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो अपना दिफा बखूबी करना जानती है, पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो अपने आप को महफूज रखना जानती है। और वो मुल्क जिनके अपने तैयारे महफूज नहीं थे वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ने की, पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की एक सोच रखे हुए थे, एक कमज़ोर और बुजदिलाना सोच रखे हुए थे, लेकिन उसका जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज से 6 सितंबर को अल्लाह की ज़ात के सहारे पाकिस्तान की अफवाज के ज़रिए दुश्मन को दिया गया और दुश्मन इस चीज़ पर मजबूर हो गया कि उसे पीछे हटना पड़ा, दुश्मन इस चीज़ पर मजबूर हो गया कि उसे पाकिस्तान की भारी और ताकतवर फौज के सामने अपने घुटने टेकने पड़े, दुश्मन इस चीज़ पर मजबूर हो गया कि वो सरेंडर कर गया। और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने जिंदाबाद होने की जो पहचान थी वो दुनिया के सामने करवाई। इसी तरह बहुत दफ़ा हमने देखा कि हम ये सोचते थे कि किस तरह से जंगें हुआ करती थी, किस तरह से लड़ाइयाँ हुआ करती हैं और किस तरह हक जो है वो गालिब आता है। फिर हमने पिछले दिनों में जेन जी ने ये देखा कि हक किस तरह गालिब आता है और दुनिया ने देखा कि हक किस तरह गालिब आता है और बातिल किस तरह दबने वाला होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि कुरान पाक से कि वजाल हक व जहाक अल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका, जिसका मतलब था कि हक आ गया और बातिल मिट गया, क्योंकि बातिल मिटने वाला ही था। इस चीज़ की बखूबी जो है मिसाल हमने देखी और फिर वो चौकियों के ऊपर अपने पहाड़ों के पीछे से सफ़ेद झंडे लहरा लहरा कर इस बात की सबूत देना, गवाही देना कि हम हार चुके हैं, हम डर चुके हैं, हमसे और लड़ा नहीं जाएगा। और उन लोगों के जो ख्वाब थे पाकिस्तान में घुसकर नाश्ता करने के, अब वो पाकिस्तान की अफवाज ने बखूबी तौर पर जो है वो उनकी तबीर जो है वो करके दिखाई
کہ پاکستان پر چڑھنے کی جو خواب اور عزم لگائے بیٹھے ہیں، پاکستان پر حملہ آور ہونے کے جو ناکام ارادے بنائے بیٹھے ہیں، وہ بالکل ریت کی دیوار ہے۔ اگر آپ کے مطابق وہ دیوار ہے تو ہم مان لیتے ہیں دیوار ہے، لیکن ہم یہ بتا دیں کہ وہ ریت کی دیوار ہے، اور ریت کی دیوار کبھی بھی کسی صورت بھی طاقت کا نشان نہیں ہو سکتی، وہ ذرا سی طاقت پر، ذرا سی ہوا پر جو ہے وہ بکھر جانے کی جو علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے، اور تا قیامت پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر مجھے اس پورے واقعے کو جو ہے اپنی منظر کشی دماغ میں کرنے کے بعد ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور اقبال نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس چیز کو الیبوریٹ کیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں جی، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور یہ وہ پلٹنا جھپٹنا تھا جس کی مثال ہم نے 6 ستمبر کو تو سنی، لیکن آپریشن بنیان المرسوس کے اندر دیکھی کہ کس طرح ہوا کے اندر بڑے بڑے طاقت کی علامت، بڑے بڑے خوف کے علامت جہازوں کو ہوا کا ایک جھونکا بنا کر ہماری افواج پاکستان نے اسی ہوا میں نیست و نابود کر دیا، اور اس بات کی گواہی دی کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک یہی بہانہ۔ آج کا پروگرام یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے محفوظ رکھے، دشمن کی جو ناپاک ارادوں سے، ناپاک عزائم سے جو ہے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد رکھے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان حمزہ احمد رضا کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے وفا کی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔

0: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।
1: उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 New City ki duniya.
1: 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 92.6.
1: छह सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: हमें प्यार है पाकिस्तान से,
1: हमें प्यार है पाकिस्तान से।
2: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान, उन जांबाजों के नाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Coronation, food history.

दुआ है फिर से एक बार चमके वो रोशन सितारा, जैसे कायद ने सोचा था वो पाकिस्तान हो हमारा।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.